0: सुपर सुप्रभात छत्रपती संभाजी नगर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान द मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम एक नई सुबह एक नया मौका और हाँ एक और एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना है कि सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं होता। हाँ अक्सर मैं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन कभी कभार सब कुछ ठीक होना भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बस सांस लेना और अपने मन को सुनना भी काफी होता है। हर सुबह मुस्कुराना अच्छा लगता है लेकिन अगर आज आपका दिल थोड़ा भारी हो तो भी चलेगा यार, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। हम इंसान है मशीन नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी छुपी जरूर होती है। आज अगर आप थोड़ा थके हुए हैं, उदास है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो खुद को गले लगाइएगा, आप अकेले नहीं है। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते जरूर है। कभी जरूरत हो तो किसी अपने से बात कर लीजिएगा या फिर रेडियो ऑन करके मेरे साथ अपना शो एंजॉय कीजिएगा, मैं हूं ना आपके साथ। तो चलिए फिर एक सुबह को एक छोटा सा वादा करते हैं कि हम खुद के साथ ईमानदार रहेंगे और अगर आज थोड़ा नॉट ओके फील कर रहे हो ना तो भी कोई बात नहीं यार, अभी तो पूरा दिन गुजरना बाकी है, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा आपके साथ। बस एक बात याद रहेगा, होप्स मत छोड़िएगा उम्मीद, क्योंकि वो कहते ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो उम्मीद बरकरार रखिएगा और याद रखिएगा कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। चाहे आप बच्चे हो, अडल्ट हो, बुजुर्ग हो, हर किसी की लाइफ में दौर आता है और लगता है कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो यार इट्स ओके नॉट टू बी ओके। कभी कभार ठीक नहीं चलना भी ठीक होता है, समझे, ताकि आप अपनी जिंदगी से सीरियसली प्यार करते हो, इसका ये मतलब होता है। सो बी हैप्पी एंड गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, कीप मुस्कुराना। कुछ देर के बाद लौट कर आता हूँ, तब तक के लिए एंजॉय करना आने वाला सुपर हिट गाना एंड स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

0: पैसों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक स्कूल था गांव में, वहां एक छोटा सा लड़का पढ़ता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत सीधा साधा था, लेकिन बाकी बच्चों से हर बात पे चिढ़ाते थे। कोई कहता था तो बहुत स्लो है यार, कोई कहता था तेरा दिमाग खराब है यार। हर दिन ये सुनकर अर्जुन चुप रहने लगा। धीरे धीरे उसने सवाल पूछने बंद कर दिए, खेलना बंद कर दिया और खुद पे यकीन भी करना छोड़ दिया। एक दिन स्कूल में नई टीचर आई, शांत, समझदार और मुस्कुराती हुई। उन्होंने सब बच्चों को गांधी जी के तीन बंदरों की कहानी सुनाई और खासतौर पर एक बंदर की तरफ इशारा किया, बुरा मत कहो। उन्होंने कहा, हमारे शब्द किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सोचो अगर गांधी जी के तीन बंदर स्कूल जाते तो क्या करते। बच्चों ने चुपचाप अर्जुन की तरफ देखा और पहली बार उस दिन एक लड़के ने अर्जुन से कहा, तो बहुत अच्छा स्केच निकालता है, हमें भी सिखा देना। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वो दिन एक मोड़ था अर्जुन की जिंदगी में नया मोड़ लाने के लिए। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक अच्छा इरादा और थोड़ी सी समझदारी किसी की दुनिया बदल सकती है। तो आज गांधी जी के उस बंदर को याद रखिएगा, बुरा मत कहो, क्योंकि शायद आपका एक मीठा बोल किसी अर्जुन के मन में उम्मीद जगा सकता है। आप भी अगर किसी को बहुत बुरा कहते होंगे, बोलते होंगे या तो फिर उसे चिढ़ाते होंगे, मत कीजिएगा। आपकी वजह से वो अपनी उम्मीद भी खो देगा। उससे थोड़ी सी प्यार से बात कीजिएगा, देखिएगा फिर उसकी उम्मीद किस लेवल पर जाती है। आई होप कि इससे आपको कुछ सीख मिली होगी। तो कहानियों का सफर आपको कैसा लगता है जरूर बताना। डीएम करना इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, और सुनते रहना एमजीएम 90.8 एफएम।
0: किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: चलिए जनाब अब एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
2: ऑल इज वेल, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस गेम के अंदर ना तो मैं आपको एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी और आसान सी पहेली पूछता हूँ और आप मुझे बताते हो उसका एकदम परफेक्ट सही सही जवाब। सो तैयार हो जाइएगा पहेली सुनने के लिए। तो वो क्या है जो बिना जल के भी जलता है? क्या है बताइए, फिर से दोहराऊं क्या? ठीक है, वो क्या है जो बिना जल के भी जलता है? जवाब इसका बहुत सही है, हर किसी के घरों में होता। कीजिएगा

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। सो अपने साथ है एमजे यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से डॉक्टर मानसी मैम। तो मैम, आजकल हम देखते हैं कि यूथ के अंदर ये ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बारे में बताइए।
1: आजकल का यूथ बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो गया है, उनको बहुत इजीली एक्सपोजर मिल रहा है कई सारी चीजों का। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सोशल मीडिया, है ना, कि भाई दूसरे का फोटो अच्छा कैसे आ गया, मेरा नहीं आ रहा है, उनके वीडियो पे इतने लाइक्स आ गए, मेरे नहीं आ रहे, है ना। ये तो हो गया कंपैरिजन। तो ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है आजकल के यूथ में, और मैं ये यूथ के मामले में ही सीमित नहीं रखना चाहूंगी, जैसे किसी वर्क प्लेस में कि भाई हम कंपैरिजन करते हैं कि इनकी सैलरी ज्यादा है, उनकी कम है, इनका ऑफिस अच्छा है, इनका नहीं है। अब मैरिटल लाइफ में भी हम कंपैरिजन करते हैं कि इनका घर अच्छा है, हमारा नहीं है, इनका स्पाउस तो अच्छा है, हमारा लड़ते रहता है, है ना। तो हर चीज में कंपैरिजन। व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन आल्सो, कि उनका बच्चा फर्स्ट आ रहा है, हमारा बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा है, तो ये हर एक चीज में जो कांस्टेंट कंपैरिजन शुरू हुआ है। एंड एस्पेशली व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा कंपैरिजन फोकस में आ गया है। सब अपने डीपीज अपडेट करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, फिर काफ़ी सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी सारे वो है ना वीडियोस फोटोज शेयर करते हैं। तो बहुत ही कांस्टेंट कंपैरिजन अब लोगों का हो गया है। तो ये तो एक बात रही। सेकेंडली, आजकल बहुत हाई लेवल ऑफ अनसर्टेंटी देखी जा रही है अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जॉब्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, है ना, सोशल आइडेंटिटीज हो गई, ये सब चीज़ों में भी दिक्कतें आ रही हैं। और इसका कारण भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है ही, अनसर्टेंटी, क्योंकि हमें लगता है कि अरे उनको लंदन में जॉब मिल गई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारा अनसर्टेन हम ज़्यादा सोचने लग गए हैं ना, हम ओवरथिंक करने लग गए हैं। एक और है कि ये जो हमारे बार बार नोटिफिकेशंस हमको मिल रहे हैं फ़ोन पे या और सोशल मीडिया पे, उससे हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस स्टिम्युलेशन मिल रहा है, तो बार बार वो अलर्ट मोड में जा रहा है। किसी का नोटिफिकेशन आता है कि ये कहीं वेकेशन करने गए हैं, और फिर हमारा है ना वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, फिर हम सोचते हैं पता नहीं मैं क्यों नहीं जा सकता। तो ओवरथिंकिंग तो हो ही रही है, वो लूप तो क्रिएट हो ही रहा है, और फिर नेगेटिव थिंकिंग का भी लूप क्रिएट हो रहा है। तो मेरा सजेशन है कि सब लोग सोशल मीडिया से है ना थोड़ा बच कर रहें, और बहुत वाइजली इसका उपयोग करें आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये कैसा एनहांस कर सकता है या ये अवेयरनेस कैसा ला सकता है, थोड़ा सा आपको वाइज होना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट।
0: तो यूथ में और थिंकिंग क्यों बढ़ रही है, रीजन क्या है, ये अभी हमने जाना। सो दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में आपके मेंटल हेल्थ के रिलेटेड या और थिंकिंग रिलेटेड कुछ सवाल हो, तो हमें डीएम कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा।

फेवरेट सॉन्ग एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने। तो लगता है अभिषेक भाई की भी किसी अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई है, इसलिए इसे गाने सुनने का भी मूड कर रहा है। चलिए फिर अभिषेक की फरमाइश पूरी करते हैं और उनका ये पसंदीदा गाना प्ले करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जल्दी करे, देर मत करे और एंजॉय करे आने वाला सुपर से डुपर हिट गाना। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

ऑनलाइन स्कैम ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, इस वजह से हर कोई कहता है कि लेकिन हम बच के नहीं रहते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और भाई ऑल इज वेल, कुछ शुरू नहीं है क्योंकि तकरीबन 4 करोड़ का स्कैम हो चुका है अपने शहर में। एक लेडी डॉक्टर है अपने शहर में जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम की शिकार बन गई है। हुआ क्या था कि उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक आई जो कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप की थी, तो उन्हें लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। और उस ग्रुप के अंदर उन्होंने चेक किया कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ग्रुप में शेयर मार्केट और डिजिटल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। तो शुरू में डॉक्टर ने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद उनको प्रॉफिट पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पर प्रॉफिट होने लगा। इससे उनका उस ग्रुप के ऊपर भरोसा और बढ़ गया। तकरीबन उन्होंने ऐसे 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन जब प्रॉफिट का पैसा बाहर निकालने की बात आई तब स्कैमर्स ने अलग अलग बहाने बनाना शुरू कर दिए। तब डॉक्टर को समझ आया कि पूरा प्लेटफॉर्म ही फेक है। इसके बाद फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में चले गए एंड 24 घंटे में तकरीबन 1 करोड़ रुपए उन्होंने बचा लिया ट्रांजेक्शन होने से, लेकिन बाकी के पैसे पूरे चले गए उनके। इसी वजह से कहते हर कोई और पुलिस डिपार्टमेंट भी कहता है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स एड्स पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और जो लिंक आपको पता नहीं है उस पर क्लिक तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो भाई रीचेक जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी और उस प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड भी चेक करना, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड आपकी नजरों के सामने क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 करोड़ रुपए गई इन मैडम के जिंदगी भर की कमाई है भाइयों, और एक झटके में पूरी खाली हो गई। तो जितनी आसान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट लगती है तो उससे डबल खतरा भी उसमें होता है। तो जहाँ पर आपको प्रॉफिट हद से ज्यादा ही हो रहा है ना, तो उस जगह पर क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि सच में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

0: apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/psd or call on 9067612000.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

गिफ्ट जीतने का मौका मैं ना हर किसी को देता हूँ अपने शो में यार, क्योंकि गिफ्ट जीतने में जो मजा है ना किसी और चीज में है ही नहीं। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और मैंने आपको एक पहेली पूछा था और हम शो के स्टार्टिंग में एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। और इसमें मैंने पहले पूछा था कि वो क्या है जो बिना जल के भी जलता है, और इसका सिंपल सा जवाब है दीपक। जी हाँ, दीपक की बात कर रहा हूँ मैं, दिए की बात। उसमें जल नहीं होता है लेकिन जलता जरूर है। देखो सवाल के अंदर ही जवाब छुपा था, थोड़ा आपने दिमाग पर जोर लगाया होता तो एकदम सही जवाब सबसे पहले दिया होता। सो आज एकदम सही जवाब सबसे पहले दिया है श्रुतिका काळे ने। सो कांग्रेचुलेशन श्रुतिका जी, आज आप विनर बन चुकी हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो श्रुतिका जी आज के विनर है, उन्हें गिफ्ट मिल गया। आपको भी विनर बनना है ना तो मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए, 7:54 पे मैं आपको पहेली पूछता हूँ। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well, RJ Adnan, the morning show, freshness, light radio, come flow. On MGM 90.8 FM.

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

0: blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus and 6th Co, Chhatrapati Sambhajinagar.
1: अब आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: हवा से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।

0: उसको देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हज्जर

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका दिन शानदार रहा होगा और अब शाम की ये खूबसूरत घड़ी आपके लिए सुकून और खुशियों से भरी हो। मैं हूं आपकी दोस्त एंड ऑफ कोर्स बातें करेंगे कुछ और भी बेहतरीन और खास। शाम का समय दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा रुक कर खुद से मिलने का समय होता है। ये वो पल है जब हम अपने काम, जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं से थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने मन को आराम दे सकते हैं। एक हैप्पी इवनिंग का मतलब सिर्फ सूरज ढलना नहीं होता बल्कि अपने दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी होता है। चाहे दोस्तों से कुछ बातें करना हो, परिवार के साथ चाय का आनंद लेना हो या फिर अपनी पसंद का संगीत सुनना हो, ये छोटे छोटे पल हमारी शाम को खास बना देते हैं। तो आज की इस प्यारे से शाम में कोशिश कीजिए कि अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगे और उन बातों के लिए शुक्रिया कहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है, क्योंकि खुशियाँ अक्सर बड़ी चीजों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। इसी सकारात्मक सोच और सच्ची ऊर्जा के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी बाकी है कुछ और शानदार गाने जो हम आपके लिए बजाएंगे ओनली ऑन MGM 90.8 फिल्म साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो और पूरी शिद्दत से चाहो तो उसे पाने की राह अपने आप ही बन जाती है। शिद्दत का मतलब सिर्फ किसी इंसान से प्यार करना नहीं बल्कि अपने सपनों, अपने लक्ष्य और अपनी खुशियों को पूरे मन से चाहना भी है। जब हम किसी का काम सिर्फ करना नहीं बल्कि उसे दिल से जीना शुरू कर देते हैं तो हमारी मेहनत में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। रास्तों में मुश्किलें आती है, रुकावटें भी आती है, लेकिन शिद्दत से चाहने वाला इंसान हार नहीं मानता। कई बार मंजिल मिलने में समय लग जाता है लेकिन सच्ची चाहत और ईमानदार कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। शायद इसी वजह से कुछ लोग अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सपना देखा नहीं होता बल्कि उसे पाने की पूरी कोशिश भी की होती है। अगर आपके दिल में कोई सपना है, कोई इच्छा है, कोई लक्ष्य है तो उसे पूरी शिद्दत से चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए क्योंकि जब इरादे मजबूत होते हैं तो मंजिल भी दूर नहीं रहती। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन गाने सुनते हैं। ओनली ऑन एनजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी अपने लोगों के लिए समय निकालना भी भूल जाते हैं। लेकिन दिन भर की थकान के बाद एक चीज है जो मन को हल्का कर देती है और वो है शाम की गपशप। जी हाँ, शाम की गपशप सिर्फ बातें करना नहीं बल्कि रिश्तों को समय देना, परिवार के साथ चाय पर कुछ मिनट की बातचीत होना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक होना या फिर किसी अपने का हाल चाल पूछना, ये छोटी छोटी बातें हमारे दिन को बेहतर बना देती है। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण सी बातचीत चेहरे पर मुस्कान ले आती है और दिन भर का तनाव भी कम कर देती है। गपशप का मतलब सिर्फ खबरें या चर्चाएं नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी होता है। तो आज की शाम मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा समय निकालिए और अपने आसपास बैठे लोगों से दो बातें कीजिए। यकीन मानिए, दिल को जो खुशी आमने सामने की बातचीत में मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती। तो दोस्तों याद रखिए, शाम की गपशप जरूरी है क्योंकि यही वो समय है जो रिश्तों में गर्माहट और जिंदगी में मिठास बनाए रखता है। आप सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही साथ साथ चलते हैं। कभी कुछ पल हमें हंसाते हैं तो कभी कुछ यादें या हालात दिल को थोड़ा उदास कर जाते हैं। यही तो जिंदगी का रंग है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के किसी कोने में खामोशी भी होती है। दर्द का आलम ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मुश्किल वक्त के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। दर्द हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि हमें मजबूत बनना सीखता है। और कभी कभी तो एक अच्छा सा गाना, किसी अपने की बात, एक छोटी सी मुस्कान भी दिल के बोझ को हल्का कर देती है। इसलिए अपने जज्बातों को दबाइए मत, उन्हें महसूस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज आपके दिल में भी कोई अनकही बात, कोई पुरानी याद दस्तक दे रही है तो इस पल को इस संगीत के साथ जी लीजिए, क्योंकि गाने अक्सर वो कह जाते हैं जो शब्द कह नहीं पाते। आप सुनते रहिए FM 90.8, साथ है तो बात है।
1: गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्याचा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: ऍडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज के समय में बालों की देखभाल हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। धूल, प्रदूषण और व्यस्त जीवन शैली का असर सबसे पहले हमारे बालों पर दिखाई देता है। ऐसे में अगर हम प्राकृतिक उपाय की बात करें तो जासवंत यानी कि हिबिस्कस एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। हिबिस्कस के फूल, इसकी पत्तियों में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो बालों को पोषण देने में मदद करते हैं। माना जाता है ये बालों को मजबूत बनाने, उनकी चमक बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। कई लोग हिबिस्कस के फूल का पेस्ट या तेल बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। खास बात तो ये है कि हिबिस्कस सिर्फ बालों की सुंदरता ही नहीं बढ़ाता बल्कि बालों की जड़ों की देखभाल में भी मदद करता है। यही वजह है कि आयुर्वेदिक हेयर केयर में इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। हालांकि हर व्यक्ति के बालों की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपनी ज़रूरत और स्थिति को समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई ऐसे उपहार दिए हैं जो हमारी रोज़मर्रा की देखभाल को आसान बना सकते हैं और हिबिस्किस भी उनमें से एक खूबसूरत उपहार भी है। इसी जानकारी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले शानदार गाने की ओर। आप बने रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ, ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। बाल हमारी खूबसूरती और आत्मविश्वास का एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए उनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। जब बालों की देखभाल की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, शुद्ध नारियल तेल। नारियल तेल का इस्तेमाल हमारे घरों में पीढ़ियों से होता आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बालों को नमी देने और उन्हें मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। नियमित रूप से तेल लगाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल अधिक स्वस्थ दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला नारियल तेल ही इस्तेमाल करें। कई बार मिलावटी उत्पादन बालों को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए तेल खरीदते समय उसकी गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें। बालों में हल्के हाथों से नारियल तेल की मालिश करना न सिर्फ बालों के लिए अच्छा माना जाता है बल्कि दिन भर की थकान को भी कम करने में मदद करता है। कुछ मिनट की ये देखभाल आपके बालों को बेहतर महसूस करा सकती है। अगर आप अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ और खूबसूरत रखना चाहते हैं तो शुद्ध नारियल तेल को अपनी हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बनाए रखिए। और ये छोटी सी बात ऑफ कोर्स आपके दिमाग में पैक करके रखिए और सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके बाल स्वस्थ, मुलायम और चमकदार दिखे, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, धूल और प्रदूषण के कारण बालों की देखभाल करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में प्राकृतिक उपाय है एलोवेरा जेल। एलोवेरा को प्रकृति का एक अनमोल उपहार माना जाता है। इसकी ठंडक और प्राकृतिक गुणों की वजह से लोग इसे त्वचा के साथ साथ बालों की देखभाल में भी इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा जेल बालों को नमी देने में और उन्हें फ्रेश महसूस कराने में मदद करता है। कई लोग बाल धोने से पहले एलोवेरा जेल को स्कैल्प और बालों पर लगाते हैं। इससे बाल अधिक मुलायम और संभलने में आसान महसूस हो सकते हैं। यही कारण है कि एलोवेरा जेल कई हेयर केयर प्रोडक्ट्स का आज हिस्सा बन चुका है। हालांकि किसी भी प्राकृतिक उपाय की तरह ये भी जरूरी है कि आप अपनी जरूरत और बालों की प्रकृति को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल करें। अगर एलर्जी या किसी तरह की परेशानी हो तो ऑफकोर्स डॉक्टर की सलाह मशवरा जरूर लें। एंड कभी कभी प्रकृति के सरल उपाय भी हमारी रोजमर्रा की देखभाल को आसान बना सकते हैं और एलोवेरा जेल उन्हीं में से एक है। ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए ऑफकोर्स आप सुनते रहिए MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: देखते ही देखते हमारी ये खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन MG90.FM। उम्मीद है कि आज का ये साथ बातें और शानदार गाने आपके दिल को छू गए होंगे, आपकी शाम को थोड़ा और खास बना गए होंगे। हर शाम अपने साथ कुछ यादें, कुछ मुस्कानें और कुछ खूबसूरत पल लेकर आती है। दिन भर की भागदौड़ के बीच अगर कुछ पल सुकून के मिल जाए तो पूरा दिन सार्थक लगने लगता है और हमें खुशी है कि आपने अपने उन खास पलों में हमें भी शामिल किया है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन सिर्फ आज की शाम के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, नई बातों के साथ और नए गानों के साथ। तब तक अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, मुस्कुराइए और जिंदगी के हर छोटे बड़े पल में खुश रहिए। याद रखिए, हर ढलती शाम एक नई सुबह का संदेश लेकर आती है, इसलिए उम्मीदों का दामन थामे रखिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आपका ये प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड टू MGM90.FM, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: अगं प्रिया, ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
4: हो, आणि मी तर स्वगणना केली। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार,
3: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
4: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
3: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।
1: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट MGMU.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Road Chhatrapati Sambhajinagar।
3: अगं प्रिया, ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
4: हो, आणि मी तर स्वगणना केली। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार,
3: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
4: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
3: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।

ऑनलाइन स्कैम ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, इस वजह से हर कोई कहता है कि लेकिन हम बच के नहीं रहते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और भाई ऑल इज वेल, कुछ शुरू नहीं है क्योंकि तकरीबन 4 करोड़ का स्कैम हो चुका है अपने शहर में। एक लेडी डॉक्टर है अपने शहर में जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम की शिकार बन गई है। हुआ क्या था कि उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक आई जो कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप की थी, तो उन्हें लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। और उस ग्रुप के अंदर उन्होंने चेक किया कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ग्रुप में शेयर मार्केट और डिजिटल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। तो शुरू में डॉक्टर ने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद उनको प्रॉफिट पर प्रॉफिट होने लगा। इससे उनका उस ग्रुप के ऊपर भरोसा और बढ़ गया। तकरीबन उन्होंने ऐसे 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन जब प्रॉफिट का पैसा बाहर निकालने की बात आई तब स्कैमर्स ने अलग अलग बहाने बनाना शुरू कर दिए। तब डॉक्टर को समझ आया कि पूरा प्लेटफॉर्म ही फेक है। इसके बाद फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में चले गए एंड 24 घंटे में तकरीबन 1 करोड़ रुपए उन्होंने बचा लिया ट्रांजेक्शन होने से, लेकिन बाकी के पैसे पूरे चले गए उनके। इसी वजह से कहते हर कोई और पुलिस डिपार्टमेंट भी कहता है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स एड्स पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और जो लिंक आपको पता नहीं है उस पर क्लिक तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो भाई प्री चेक जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी और उस प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड भी चेक करना, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड आपकी नजरों के सामने क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 करोड़ रुपए गए इन मैडम के जिंदगी भर की कमाई है भाइयों, और एक झटके में पूरी खाली हो गई। तो जितनी आसान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट लगती है तो उससे डबल खतरा भी उसमें होता है। तो जहां पर आपको प्रॉफिट हद से ज्यादा ही हो रहा है ना, तो उस जगह पर क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ये सच में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था, रोज सुबह टाइम पर उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता और हमेशा बोलता सब ठीक है। पर सच ये था कि उसके अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। थकान सिर्फ बॉडी की नहीं थी, मन भी रोज थोड़ा थोड़ा थकता रहता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं वीक हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ? और जवाब आया, नहीं, तुम इंसान हो। उस दिन उसने एक छोटी सी चीज सीखी, जब पैर दर्द करते हैं हम बैठ जाते हैं, तो जब मन दर्द करता है उसे भी थोड़ा आराम देना जरूरी होता है। उसने हर दिन स्ट्रांग दिखना छोड़ दिया और सच बोलना शुरू किया, आज मन ठीक नहीं है। और वही दिन था जब उसका हील होना शुरू हुआ था। इसे सीख हमें यह मिलती है कि स्ट्रांग रहना मतलब हर वक्त मुस्कुराना ऐसा नहीं होता है, कभी कभी रुक जाना, महसूस करना और एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। याद रखिए, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बस अकेला मत रहना और ये फॉलो करना कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, देखिएगा जिंदगी गुलजार जरूर बनेगी। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: एक मुस्कान की कीमत तुम क्या जान रमेश बाबू, एक मुस्कान से तस्वीर बढ़िया आ जाती है। MGM 90.8 FM पर आरजे अदनान आपके साथ है। एक मुस्कान की वजह से आपकी तस्वीर में ना चार चांद लग जाते हैं, यह आपने भी नोटिस किया होगा। नॉर्मल सा ना तो कैमरे के सामने बस खड़े रहिए चेहरे पर बिना मुस्कान के साथ, और फोटो क्लिक कीजिए और देखिएगा कैसी लगी ये फोटो। एक और फोटो लीजिए जिसके अंदर आपकी मुस्कान की चमकान दिखाई देगी, और फिर उसके बाद वो फोटो देखिएगा क्लिक करने के बाद कितना फर्क है। पहली फोटो लगती है कि यार ये क्यों ही निकाली फोटो, इतनी गंदी। उसके बाद जिस फोटो में मुस्कान आएगी ना, मतलब चेहरे पर स्माइल रहेगी ना, वो फोटो देखिएगा खूबसूरत लगेगी, माशाल्लाह लगेगी। तो इतनी ताकत होती है एक मुस्कान में, मतलब मैं स्माइल की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहोगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये बार बार क्यों ले रहा है, मुस्कान मुस्कान मुस्कान। खैर वो तेरी वाली गर्लफ्रेंड है, मैं अपनी मुस्कान मतलब मैं हैप्पीनेस की और स्माइल की बात कर रहा हूँ। तो इतनी ताकत होती है एक स्माइल में। वैसे मेरे जैसे लोग बहुत है जिनको ना तो स्माइल करना ही नहीं आता, हालांकि जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं लेकिन

0: जब फोटो की बात आती है ना तो उन्हें सबसे मुश्किल काम लगता है स्माइल करना। जी हाँ, मेरा भी वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ कुछ लोग ना तो इतने बेहतरीन स्माइल करते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि शाहरुख खान की स्माइल आया है, तौबा तौबा, क्या बढ़िया स्माइल है ना, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो ऐसी स्माइल जरा आपके चेहरे पर भी बरकरार रखिएगा और ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, स्माइल के साथ फोटो और विदाउट स्माइल के साथ फोटो, तब आपको समझेगा कि खुश रहने की कीमत कितनी कम है भाई, बहुत छोटी है और फ्री में खुशियां मिलती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।
1: अदनासी बात विद RJ अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

ताल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खान गालिब का पता मिलता है।

0: ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, अर्ज किया है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत